सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा।

सकल मलेच्छ करो रण कहता, जे अस तुझ तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुखित वह मरे।

जी महाराज जी ने दसिया है कि सतगुरु जी एक वकील की तरह भी है। जिवें कोई साडा केस किसी जज के पास है तो उत्थे जज के कोल पेश होने के वास्ते सानू वकील की जरूरत होंदी है। वकील तो बिना असी जज के कोल नहीं जाते। फिर वकील का हिसाब की है, वह साढ़े दोषां नूं भी साढ़े गुणां नूं भी साढ़े अवगुणां नूं भी जो भी उस केस विच है जो जिस नाल संबंधित है उन्हूं पढ़ता है तो दूजे पासे जज के नाल भी नेड़ता है। यही उदाहरण सतगुरां ने वरती गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी ने विछड़िया मेला प्रभु हर दरगाह का बसीठ कि विछड़िया होया नूं परमात्मा रूपी जज तो विछड़िया होया जीवां नूं मिलाउण वाले हर दरगाह का बसीठ सतगुरु जी परमात्मा की दरगाह के विचोले भी ने। फिर अगे जदों होर बचन असीं पढ़ते हाँ तो सतगुरां ने गुरु का रुतबा जिहड़ा है ना एक ये भी दसिया कि जिवें किसी दरिया के विचों पानी विचों एक किनारे तो दूजे किनारे लाउण वास्ते बेड़े की जहाज की लोड़ हुंदी है। इस तरह ही सतगुरु जी दे गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन बचना दे विच पट साहिबाना ने दसिया है गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोय। जदों ये बचन भी असीं पढ़ते हैं बाणी दे विच गुर जहाज खेवट गुरु के गुरु ही जहाज है, गुरु ही उस जहाज नू चलाउण वाला है जिस जहाज के उपर साडियां आत्मा ने परमात्मा दे तक जाना है। असीं उत्थे भी ये जिहड़ा रूप एक गुरु जी दा भी पढ़ते हैं। जे वेखिए बाणी दे विच बेअंत रूप सतगुरु जी अपने धारण करके सानू जीवन नू मिलाउंदे ने। किते साडे माता पिता दे वांग उह फर्ज निभाउंदे ने। गौड़ी बावन अखरी दे विच असीं पढ़दे गुरदेव माता गुरदेव पिता। किते साडे मित्र बन के करो बेनंती सुन मिरमीता संत टहल की बेला किते मित्र बन के सानू समझाउंदे ने। जदों असीं बचन होर बाणी दे पढ़ते हाँ तो सतगुरु जी की पावन बाणी विच दसदे है कि ये सारे रूप उदों गुरु जी धारण करके साडी पालना करदे ने जदों असीं भी गुरु दे हुक्म दे विच चलना मन लईए। असीं भी चाहिए कि असीं गुरु दे हुक्म दे विच चलना है। जिहड़ा हुक्म विच नहीं चलेगा वो फिर सतगुरां दे इन्हां रूपां नूं प्राप्त करके कोई फायदा नहीं उठा सकेगा इन्हां रूपां तों, क्योंकि ना वो माता पिता दे रूप विच गुरु नूं जाण के उन्हां कोलों अगवाई लै सकदा है, ना मित्र बन के सिख सकदा, ना ये सतगुरु नूं महावत समझ के जहाज समझ के ये जिहड़ा संसार विच इस संसार दे विचों गुरु दे कोलों ये कोई फायदा लै सकदा है। उत्थे सतगुरां ने सानूं ये दस्सिया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कि ये उन्हां ते सतगुरां दी मेहर हुंदी है जिहड़े ये मन लैण कि असीं गुरु दे हुक्म विच चल के अपने जीवन विच तब्दीली लियाउणी है। जदों असीं सुखमणी साहिब जी दे बचन पढ़दे हाँ तो गुरदेव जी समझदे गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आग्या मन मैसा है। जिहड़ा गुरु की आग्या दे अनुसार जतन करेगा अरदास करे कि महाराज मेरे अवैड़े मन नूं मेरे ये दुनिया दे विच डुबदे जांदे समुंदर विच जीवन नूं सतगुरु जी अपना मेहर भरिया हथ रख के बचा लवो। जिहड़ा बचन दे वास्ते तैयार होवेगा फिर सतगुरु ते उन्हें बचाउणगे ना। तो जिहड़ा कहेगा ही नहीं कि मैं इस पासे तुरना ही नहीं जिहदे मन दे विच इच्छा ही नहीं फिर उन्हूं विछड़े नूं कोई नहीं मिला सकदा। हुण एक बच्चा ही है मेले दे विच परिवार नालों विछड़िया है तो जे वो एक आवाज़ दे नाल कहेगा मैं विछड़िया होया है हजारां उन्हूं मिलाउण वाले तुर पैणगे, पर जिहड़ा अहसास ही नहीं करेगा कि मैं विछड़िया है तो ना मैं मिलना चाहुणा है उन्हूं फिर कोई भी हजारां दा इकट्ठ विच्चों कोई भी उन्हूं नहीं मिलावेगा। इस तरह ही भाई गुरदास जी ने सानू दस्सिया कि साडी तैयारी करनी पवेगी पहलां फिर असीं गुरु दे दर तों कोई प्राप्त कर सकदे। एक कदम सानू चलना पवेगा फिर करोड़ां कदम सतगुरु जी अगे लैण वास्ते आउणगे जीवन में सुधार करनगे। सो इस करके भाई गुरदास जी समझाउंदे ने कि गुरु नूं धन इस करके कहना है गुरु दा असी सत्कार बलहार बारने इस करके जाना है वाहिगुरु तों गुरु दी जोत तों कि वो सानू इस संसार दे विच जीवन नूं

मेरा गुरु सो तन सुहावा ये सो तन सुहावा वाहेगुरु बोले सोनिहाल बोली सोनिहाल सत श्री अकाल।

मुंदा संतोख सरपत चोड़ी ध्यान की कर है बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुग त्रंडा प्रतीताई पंथी सरल जमाती मन जीता जगजीत आदेश तयादेश वादा नीला नादा नाथ जुग जुग एको वेस भुक्त ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध संजोग बिजोग दो कार चलावै लिखे आवै भागा देश तयादेश आद नीला नादा नाथ जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण जिव तस्पावै ते वै चलावै जिव होवै फुरमान होवे कै उन्ह नदर नावै बहुताए विडाण

यंत्र यंत्र नमो एस्ते एस्ते नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अदु अर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं पुरुष पारं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल अशेदी अभेदी अनामं अकामं समस्त पराजी समस्त सता

मद्वत प्रचंड मित गत अखंड अवलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व पुंडा डंडन बढ़िया चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारी अपारी हरिंकर नरे नामिया काम भुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र प्रथि सया दिशया दृश्या कृशय भगवती शंत्वय प्रसाद कहते कि आओ शिज दिस कि आपिज पिस कि आगन कर मैं कि आपन पर मैं कि आप भिज लोक है कि आदित सुख है कि अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रवाह है कि धर्म तो जाह कि आ सुख भरने के सर्वा भरने की जग पंकृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्म स्वरूप है

अनित्य हैं, सुनित्य हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट संत है प्रसाद। सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणु सर्वंत्राणु सर्वंकर्म सर्वंकर्म सर्वंगुक्ता सर्वमुक्ता रसावल शांत।

भगवती संतव प्रसाद कि जाओ हरजहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि उसन चिराग का के कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज करेंद है करीम उल कमाल है कि उसन जमाल है गरीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरीफ उल सिकन है हिरास उल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्त निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्त जुबा है कि साहिब की राह है कि नरकम प्रणास है बहेस्तुल निवास है कि सर्वर्गवन है हमेशुल रवन है तमाम तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमेश समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है आमी कुल अमा इमा है अंकरीमुल कमाल है कजूरत जमाल है अचुन प्रकाश है कि हमें तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि हमें तो बेपूत है कि हमें तो पसा है कि आत्म प्रवाह है

करुणालय है और काल है, खल खंडन है, मैं मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वोवारण है, धृत के तन है, जाके कर्ण है, मनमानी है, जगजानी है, सर्वम पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य।

अकृताकृत है अमृतामृत है, अमृतामृत है अम करुणाकृत है, अकृताकृत है तरणी तृत है, अमतेश्वर है परमेश्वर है, अकृताकृत है अमृतामृत है अजवाकृत है, अमृतामृत है नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्पन है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पपंजन है, अर्घंजन है, रिप्तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग पर्यात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र।

अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी शांत अजय अलय अभय अभय अपुवजुअनाश अकाश अगंज पंज अलख अपख अकाल ध्यान अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ अप्रमाथ अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे सुमस्तुल निवासे नृकाम बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुतर्म बेपूते सदा सचिदानंद सत्रम प्रणासी क्रीमुल को निंदा सुमस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पूते स्वयं भव सुपंग सर्वदा सर्वजुगते

लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पैशाह को शीस नेवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो

देह बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुमराता, किन्विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता।

पड़ेल। सुने गुंग जो याहि सुरसना पावई, सुने मूड़ चितलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निक न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्थ सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी।

जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै हुवै तां सन्मुख सिख कोई जीव रहै गुरु नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतरयात्मै समाले आप छड सदा रहे परणे गुर बिने अवर न जाने कोए कहै नान सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते बिमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै।

सारी है। जैसी अग्नि उदर में है तैसी बाहर माया, माया अग्नि सभी को जेही करते खेल रचाया। जाओ तुस पहाणा ता जम्या परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी त्र

तेरे नारे ते सजन के हार गए सटकन वालिया, इकना वै त्रंब हालिया, इकना वै त्रंब।

बिन सतगुरु के नाना पाया, बिन सतगुरु के नाना पाया, सतगुरु चाप रखे कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विचो मो चुकाया, उत्तम विचार जिन सच्चे स्यों चित लाया।

परिधान महंडा तिले कागज मल तमस्तकला कूड़ा लाल छड़े हो एक मल लगती आई है पालते हुए उपाय जे वही कार कमाई जे हो प्रभु लिखा था तोड़ दिना दे पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है।

थोड़ी चित्त अंदर सबको दृढ़ चला आपे दिवड़िया यहाँ पे कर्म कराएंगा वड्डो वड्डा वडमेदनी सिरे सिर धंधे लाएंगा नदर पट्टी जे कर सुल्ताना।